दान बबेक दान विसाह दान भरूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल

0: गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरन न जाई धोती टिका ते जप माली तैन मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लये जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पियावे हो ईसा कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम करे डा डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती तो खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान लेश तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख के चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा ए अन्न साडा फिटा तन फिटा फिर करेन मन जूठे चुली प्रेम कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई।

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कांडिये सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के हुना किए जे लेखे वरतै सोए महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवे करे।

कसमे करे बराबरी मिल गैर तंत्र पाए बजो दुआए अगला मोह में पाणा खाए जिस दा दिता खावना तिस कहिए साबास नानक हुकम ना चले नाल कसम चले।

पौड़ी नानक रतना जापड़ी हरता के परावार आप कराए सागति फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया कतरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जनक राज बरताया सत जोग आलीना गुर शब्द मन मान्या अपतीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना सत गुर सत सत गुर के शब्द सत सत साध संगत है गुरमुख जानी है दर्शन ध्यान सत सुरत शब्द सत गुर सिख संग सत सत कर मानिया दर्श ब्रह्म ध्यान शब्द ब्रह्म ज्ञान संगत ब्रह्म थान प्रेम पहचानिया सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान काम निहकाम उन मन उन मानिया सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अर सहु गुर सहु चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ

नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाय अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ शांत ज्यो जानह त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनौ असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रात साध भूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कुलिया लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेरहु ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारहु काढ़ पव जल फेरिया सलोक निरत न पवै असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाउ नानक की बेनंतिया मिले निथावे थाउ शांत दूसर नाही ठाउ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइए त्याई सो

शांत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोय थान थनंतर आप जाल थाल पूर सोय जाल थाल महियल पूर रहे आ सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही

मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

मैं ना ही जाहों करी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सुआ।

शर्म जप तप संयम धर्म न कमाय सेवा साधन जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोस्त सवे तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी वसे मोरो परिवार सेवक सिख सवे करतार मोर अच्छा निज कर दे करिए सब वैरण को आज संघरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊँ जो वर चाहो सो तुम ते पाऊँ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा राख लेहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, काट काट के पट पट की जान। जाव उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब दिह अपार। जाव आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको करपाहन अनमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। आंडज जीरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिति उठ वति उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हार हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दा।

सहाय दुष्ट दुख तिलहु बचाई। सवैयन पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं न कहे ओ। सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

गोविंद दास तुहार, सगल द्वार कौ षाडक, गहियो तुहारो द्वार। बाही गही की लाज आस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार।

ज्यों जन हो त्यों राख, हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख, अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी कोलिए, लोक करत बेकार बिखड़े, प्रव नेर हों ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो, काड पव जल फिरिया। असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारावार, हर किरपा करके बख्श लै हो, हों पापी बड़ गुनहगार। लेखै कत है न छोटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारी, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना।

दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है। सवना दावे साहु, सजन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है। सवना दावे साहु, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पांजवा, गुर अपने बलहारी। जिन पूरन पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया। प्रभ अपना सदा त्याया, गुर अपने बलहारी। जिन पूरन पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया। प्रभ अपना सदा त्याया,

गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, सतगुर पूरे पाणा, तां जपिया नाम

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते आरजा पड़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाख माला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहुत तीर्थ पवे।

0: बोले हारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर तू सच्चा साहेब सिर्फ सवाल जिनकी ती सो पार पया कहो नानक कर दे किया बाता जो किश करना सो कर रहे महला दूजा
1: जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग शूद्र शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन।

कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बधा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़े हो।

0: मनसा आकार से मरंत तुझे ही नर काम क्रोध मिट्यो जोत खण बाचा आकार से मरंत तुझे तेन दुख दृद मिट्यो जो खण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो।
1: जह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटा खिन जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरो।
2: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद रंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास।
3: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पो मन है तुम मलियागर प्रगट सुबास त्रू प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जेह बिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।

सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसियै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया। तुद डिठी सच्ची पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला पहला। जिस जल निद कारण तुम जग आई सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेस भीख चतुराई दुबिधा एहो फल नाही जियो। जिस जल निद कारण तुम जग आई सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेस भीख चतुराई

अवगुण छोड़ गुणा कौ तावहो, कार्य अवगुण पशुताही जीयो। सार अपसार की सार न जान है, फिर कीच बुढ़ाही जीयो। अंतर मैल लोभ

निर्मल नाम जपहौ सद गुरमुख, अंतर की गाते ताही जीओ। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागहु, सच गुर बचनी फल पाही जीओ। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जीओ,

श्याम कहे सितंबर स्वामी, सच में आछे सच रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहया भरपूर, राम नाम देवा में सूर। नय लै प्रचित जाहे नानक तो मुखंतर पाहे। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया। पार जात गोपी लय आया, वृंदावन में रंग किया। कल में वेद थर्बण हुआ, नाउ खुदाई लो पया। नील बस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क उठानी अमल किया। चारे वेद होए सचार पर।

पढ़ पुस्तक संध्या बादं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, संध्या बादं। उछल पूजस बगल समाधं, मुख झूठ विपुखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलकले लाटंग, दोय तोती वस्त्र कपाटंग, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं।

बोल दी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी के पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जैस डठ सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी किस्सा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे।